एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए। नानक सेवक कांडिया जे सेती खसम समाए।

मूढ़ कश्चित् न जानत। महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्त न है पेव। आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा केहे बिद सजा प्रथम संसार।

रैया पाएंगे हे जावते तुमरे तबते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम कुरान कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। प्रिय सपान कृपा तुमरी कर

अब हम चले ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, लोकन की

करो प्रभ तुम रीत स राखो कृपा तार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राखो लाजम

कहो नानक कृपा पही प्रभ पय सहाई सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जय कर कीरते आखिए करते का होए बिचारो तित कर गावो सोहिला सिवरिहो सिर जनहारो तुम गावहो मेरे निरभउ का सोहिला हौ वारी जित सोहिलै सदा सुख होइ रहाउ।

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत होजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड़ बह घर बार सब को

अनुपमान अकल लिबलाकी पारस पेटिया छह करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परे मिटिया जनमा मरण पो भागा चित लागा संतोख तरे कब काल ठोकर अरदास तने गुरु रामदास सर अपार परे अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारे हो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत्व विचारे हो सदा जाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सिद्धी रंग माने नानक प्रसाद अंग समत गुर अमर अमर वरताए हो गुरु रामदास कल उतरे ते अटल अमर।

आनक तो मुख अंतर पाहे। जुज मैं जोर छली चंद्रावलकार कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी लाया वृंदावन में रंग किया।

0: सुद जाहे शीस नवाया क्या थी है जर दैक सुद जाहे महला पहला।
1: पढ़ पुस्तक संध्या वादन शिल्प हो जिस भगत संभा